0: दिनका कामो टाटल बयाल बहक निषेध जाए मैं तो बिहान नि खेत जाए तो ना खाए
1: बाबा लोई छाता थे ले जाओ खेतवा से लौटा बेर महा कर घाम रखा
0: ए का बिस्नु का बिस्नु कलर त छाता बिसाइ टुका हु लान्ड छाता ओहो मै त एक पानी बोटलिम जीवन जल्दी मिलाइ बिस्नु
1: तु बिस्ताजी ठोकै का मै त मन पानी जीवन जल मिला खाडेर रख्नु बाबा बेन सुई पानी भरि सक्कु पि हो ना पस्ना नस्के निकल कर जो सुखा हो जात का
0: पटावा मही अब बिहान का काम दिन का आराम
1: हाँ तो बिहान काम दिन का आराम
2: गर्मी मौसम में लू चिटिंगा घामन से बच सकला छाता नती कपार छोप पनेगी ध्यार से ध्यार पानी पी शरीर जू ढरक लाग मौसमी फलफूल खाई ओ घर स्कूल के छानी जुरार बनेना जुगार लगाई
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: नमस्कार तपाईं अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज गर्जन्छ सधैं बाजै